0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी. मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला. इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है. महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया. शाम दो घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे. रात नूं जाके घेरा पा लिया. गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसे नूं तंग नहीं करना. महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्ह लिआंदा रस्सियां नाल. उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लै के आए है. आके महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच. आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं. प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहेब जी. क्यों पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए जाए अचानक घेरो पाए.
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो ये साडा राज है. मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है मैं जो मर्जी करा. इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है. अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया.
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो.
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया. हो सकता वो इलाके दे बदनाम होवे जबर खां पहला भी लोगों दियां धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे. ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है. कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है. सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उस नूं पकड़ लिया.
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सब नूं सुनायो.
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया. पिंड वालियां नूं इकट्ठा करके सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया भई असीं इहनूं ऐवें नहीं लैके जा रहे. इहने आ कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनूं पकड़ के लैके जा रहे हां.
0: गै दोनों को अपर ना छेरा शीघ्र करत गमने तिस बेरा.
1: दोनों नूं पकड़ लिया उस वक्त शीघ्र ही उत्थों वापस.

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा एकदम घोड़े ने छाल जो मारी सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है इस करके सावधान रहे
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए सी तुरमाल संग बंद गए
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े बांह विच कुछ पीड़ होई झटका वज्या बांह नूं फिर सेवक ने चिट्टे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता जी नूं

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने कहते एक अजय सिंह तुम खड़े किए उसे दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ए खो लिया है इन्नी काहदी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करते तिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नु सुना रहे हैं
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघा नूं हुक्म आ सी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे वो जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे हां पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक हां हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ताकर जगाग्या कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे इह तुहाडे जिहड़े सिंघ ने इह अपनी ही मनमर्जियां करदे ऐ
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी दे उची उची बोल सुने तां उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी कादा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इने तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दयो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारिया चीजा ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जात सो सिंगन छीने उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव किया उन्होंने निसंग होके आ सारिया चीजा उन्होंने खो लिया कि ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुर
2: चौपाई भीम चंद सैलेंद्र बिलंदा पनियो सुनो तुम सकल गिरंदा क्यों न भविखत बात विचारो सिर पर शत्रु प्रबल विचारो
3: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग दे सरवण कर रहे हाँ सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे ने इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं देखना कि सिंह किन्ने क सुचेत होए ने अगे नालों ऐसिया साखियां सरवण कीतिया सोहनिया पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है बहुत दुखी होके भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहिए मिलकर बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने आओ सतकार नाल इतिहास श्रवण करिए रसना करिए पवित्र गज के आखो सा

0: करके इस तरह बैठ गए, ढिले पै गए, हौली हौली दस पिंड भी पिंड करद्या करद्या मेरा राज खोणगे, फिर थोड़ा खोणगे, फिर साडे सारयां दे राज खोणगे। इस करके आपां नूं ढिले नहीं पैना चाहीदा।
1: नित प्रत दल सिंगन को आवे, लूट कूट कर मिट हट जावे।
0: हुण नितां प्रति सिंगां दे दल आउंदे ने साडे इलाके दे विच, लुट के फिर वापस मुड़ जाते ने।
1: बाजत रहे बंदूक सदाई, मरे कि मारे फते बुलाई।
0: गोलियां की आवाज आउंदी रहिंदी आ, कदे किते गोली चल गई, कदे किते मारते, कदे किते मारते। इस तरह ये हमेशा ऐसा कर्म करते हैं।
1: शाह पुकार सुनी इक सारी, लड़ियो आन लश्कर तब भारे।
0: हां, एक बारी बादशाह ने साडी पुकार जरूर सुनी है, भारी फौजां भेजियां हन उसने एक बार।
1: अब कह जाए कहां कह शाह, निर्बल अदक लखै मन माऊ।
0: तो इस करके हुण जे आपां हुण जाके कहिंदे आ उत्थे बादशाह नूं, फिर वह जानेगा कि बहुत ज्यादा राजे जिहड़े ने निर्बल हो चुके हन।
1: बार बार की सुने पुकार, कै खिज परे करे बुरे यार।
0: बार बार जदों आपां इस तरह पुकार करांगे उन्हां दे कोले, बादशाह खिजेगा अपने ते, ते साडे नाल माड़ा कर्म करेगा भी तुसीं इन्ना भी नहीं कर सकते। एक जाना हैगा, उन्हां पांच चार हजार जाने हैगे आ, थोड़े कोल इन्नियां लखां फौजां ने, तुसीं कख नहीं कर सकते। आ झिड़कां पावेगा।
1: एक सौ जे गुर के सिख मरे, आए हजारों के सुन धरे।
0: जे महाराज का सौ सिंह शहीद हुंदा है, उहदी जगह ते हजारां दी गिनती च होर केस धारण करदे ने, भाव अमर छक लैंदे ने, ककार पहन लैंदे ने। इस तरह साडा उत्थे की मुकाबला है।
1: ने निपटे ने पाए पराजय।
0: सो इस करके ना निपटिए ते ना हारिए।
1: आन लाभ को लखै न काजै।
0: ओ नहीं जानदे कि हान की है, लाभ की है। ओ ना साडे नाल निपटदे मुकदे ने, ना हारदे ने, ना ये समझदे ने कि हान लाभ की चीज है।
1: सुनो ग्रीशो करो उपाय।
0: सुनो ग्रीशो तो भाव पहाड़ी राजे हो, आपां हुण मिलके कोई जतन करिए।
1: बिगड़त कारज समदाए।
0: इस तरह तो अपना सारिआं दा काम जिहड़ा है वो बिगड़ जाएगा।
1: सुनत घुमंड चंद तब पाखा, को उपाय तुमने अबलाखा।
0: हां, घुमंड चंद राजा कहण लग्या, चलो ये भी ठीक है कि तुसी सानू कहिंदे हो, तुसी की सोचिआ है, थोड़ा की इरादा है, आपां नूं की करना चाहिदा है।
1: बिना लड़न ते अपर ना कौ, मिले ना बचो छीन ले सो।
0: सो बिना लड़न तो होर तां कोई रस्ता नहीं है। इस करके उह सारा कुछ अपने तो खो लैणगे, ना कोई मिलना ना बचना।
1: प्रथम शाह टिक बने न जाना, सेना संच काल कमसाना।
0: पहला बादशाह को अपना जाना बनता नहीं है, पहला तो आप फौजा कठिया करिए, फिर कमसाण का जंग करिए।
1: लड़बे कहो निप तरै जे आलस, राज करन की तरै न लालस।
0: सो इस करके जे राजा नूं कहने है आलस बड़ी करते ने, इस करके तुसी राज की जिहड़ी हुण आलस है ना, ये ढिल मठ है, इहदा तुहानूं त्याग करना चाहीदा है।
1: रिप बस होए न दंड बहीना, वदै प्रताप सदंड अधीना।
0: क्योंकि दुश्मन कदे भी दंड तो बिना अधीन नहीं हुंदा, दंड देना चाहीदा है। अते जिहड़ी प्रजा है ना, ये प्रजा की एक गल हैगी आ कि

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हाथो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, ओ सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗਤ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है घने,
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने,
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा,
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जा ही है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा,
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे,
0: सारे दुश्मनों नू मार करके किस प्रकार।
1: राज पाए किम कहिए तैसे,
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए हो राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जहा है, ये दसो मेरे मन का शंका भाई इन्ने बंदियां दे उते थोड़ा जा खालसा किमें राज करेगा।
1: वधे तेज किम लह धरने,
0: तेज इन्ना किमें वधूगा इन्हां दा, किमें धरती सारी तुसी कहने सारी धरती ते राज करना इन्होंने।
1: ठहरे राज कौन कर करने,
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा।
1: बहुतन की किरत अलप करे किम,
0: ये बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने कम करना है, ये हजार बंदा किवें कर सकता है। मैं तो ये पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है।
1: बन अलप की बहुतन ते तिम,
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़ियां दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है।
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज,
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू,
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा।
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा,
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा।
1: हान लाभ जाने इस बेरा,
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा।
1: वरतें वरतारा जग जथा,
0: जिमें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च।
1: श्री मुख सुंदर ती कह तथा,
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए,
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए,
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह दी हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाएगो खर्च लेंगो लाल,
0: सो इस तरीके दे नाल कहंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल। हुण इत्थों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाएगो तो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल, इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी। सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल, उस सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करोगो निहाल,
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार,
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार, जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे, खारी तो खखा खा री छड़ देना, खा लक्ष्मी तो लल्ला ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ

0: ये पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यो कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नूं सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहना सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां, जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही वचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने, शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जिहदे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। इह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, इह कहण दा की फायदा, फिर की बणेगा, गात्रा पा के की बणेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ,

3 बजे 2:30 बजे के करीब 3 घंटे पहला सूरज चढ़न तो पहर रात होंगी या समय बद करिए 6 तो 9 सवेरे पहला पहर बन गया 9 तो 12 2 पहर कहने जिन्हों 12 तो 3 तीजा पहर हो गया 3 तो 6 चौथा पहर ये दिन दे पहर बने इसे तरह रात दे तो इनू जिहड़ा है पहर रात रहिंदी कहिंदे ने पहर रात रहिंदी 3 घंटे रात रहिंदी होवे जदों 2:30 बजे 3 बजे के करीब सर्दियां चलो 3 बजे हो गए गर्मियां च 2:30 बजे हो गए इन्ना क समा तां परपक्ता नाल निभावे इशनान करे फिर सुचम रखे संजम

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: होर जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: सुपते निसमय सतगुरु मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था के चमेली के फुल गुलाब के फुल लेके मत्था टेकया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखता है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धान केड़ी नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, ये कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आवे। सुते सिद्धि सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी का है, किन्ना किन्ना ज्ञान है। कई प्रश्न करे चाहे वह प्रश्न साढ़े संबंध रखते ने जा नहीं रखते, कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जोड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तर फिर सतगुरु दसन के नहीं असल में यह गल इस तरह नहीं है, यह गल इस तरह है। कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार दसना करिए पवित्र गज के आखो।

0: सुपती नित मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: दोहिरा ए जप गुर अर्जन साबिद गुरु नानक मुख मंत लिखियो सुकर गुर राज सतगुर सन मुख सुख संत
1: संतन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध सिंह जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जपजी साहब की पावन पवित्र महिमा अकली अकली पौड़ी के राही बख्शिश करके अखीर ते संपूर्ण जपजी साहब के किसी भी कार्ज लई दस पाठ या भी पाठ पाठक करे महाराज कहने सारे कार्ज उसके भाई रास होंगे हैं। आओ अगे होर महिमा उच्चारण कर रहे ने प्यार सत्कार नाल श्रवण करते हाँ रसना करिए पवित्र गज की आखो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
0: दोहिरा ए जप गुर अर्जन साबिद गुरु नानक मुख मंत।
1: ये जेड़ा जपजी साहब का पाठ है गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह मुखों उच्चारण किया होया मंत्र है। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने इस मंत्र की विधि जिहड़ी है वो सही ढंग नाल समझा के बख्शिश की है। ये बख्शिशां गुरु रामदास महाराज जी ने गुरु अमरदास जी तो प्राप्त कीतियां सन। सो जदों गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी ने जपजी साहब की बख्शिश की उन्होंने लिखिया होया पाठ अपने कोल रखिया संभाल के फिर गुरु अमरदास जी पास ये पाठ होया। उन्हां तो बाद फिर गुरु रामदास जी ने अगे तो अगे इस पाठ नूं उतारा करके एक सोहनी पोथी तैयार की। वो जो पोथियां दे विचों उतारा कीता होया उन्हां दे विच एक स्वरूप विच ऐसा लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब दे विच के गुरु रामदास जीओ के नकल का नकल था इसकी नकल। सो इस तरह लिखिया होया उहदे विच। सो ए पाठ बाबा जी दा एक स्वरूप दे अंदर 1736 अस्सू सुदी तीन करके इस तरीके नाल वो लिखे हुए स्वरूप दे विच जिवें लिखिया होया है। पहला जदों स्वरूप लिखते सी तां जपजी साहब की जिन्नी बार भी अगे उतारा हुंदा सी उहदे थले लिखिया जांदा सी नकल भी असीं अगे नकल कीती है भाव लिखिया है। इस तरीके दे नाल यह जिहड़ा पाठ जपजी साहब का है अगे तो अगे गुरु अर्जन देव जी ने जदों प्राप्त होया फिर इस तरीके नाल उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जपजी साहब का

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा बई जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब से

कलयुग में एक नाम आधार बोलो कलयुग में बोलो कलयुग में एक नाम एक वचन होर बापू का रोज पढ़ते हो तुसी तीसरे बापू जी कहते अवासिया नाम भाई वाहगुरु आखो वाहगुरु साचा नाम मेरा बोलो साचा नाम मेरा एक गल ए वचन तीसरे बापू गोद वाले सतगुरु कह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दो वचन उन्हां दी रचना तो निकलिया है कि मेरा कोई आसरा ना पुत ना धी ना भैन ना भरा हो कोई आसरा नहीं साचा नाम मेरा आखिर की मिलिया जगन का नाम का आसरा लिया जी पता नहीं कि

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां ते मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन सको।

ऐसे गुरु तो वारे वारे जावा जेडे मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने राजयां दी पूजा विच नहीं लाया। आख्या नहीं वो परमेश्वर जिहदी पूजा करनी आ वो राजान राजा, बोलो राजान राजयां दा भी राजा है, किसे राजे दी पूजा विच नहीं ला दिता। समय असमय अनुसार राजे जेड़े हुए ने उन्हां दी भी पूजा संसार विच हुंदी आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने सिख नूं इह बख्शिश कीती कि किसे राजे दी पूजा नहीं करनी, राजयां दे राजे दी पूजा करनी। राजान राज गरीब नवाज पातशाह, लोकी दिन चढ़दा है गड़बियां लिख के पानी दियां, जग लिख के पानी दियां, सूरज नूं मत्था टेकदे ने, सूरज दी पूजा करदे ने। साहब ने कहा नहीं, सूरज दी पूजा नहीं करनी, जेदी सूरज पूजा करनी है ओ पानान पान है, ओ सूरजां दा भी सूरज है, ओदी पूजा विच लगना है। आख्या महाराज लोकी मस्या तो दो तीन दिन बाद पैसे सुटदे ने, चंद्रमा दी पूजा करदे ने। सतगुरु पातशाह कहण लगे नहीं, चंद्रमा दे हाथ वास कुछ नहीं, चंद्रमा अपने कोलों रोशनी नहीं दिंदा, नमो चंद्र चंद्रे दी पूजा करनी। आख्या महाराज देवी देवत्या दी पूजा करिए, कहण लगे नहीं देवी देवत्या दी पूजा नहीं करनी। कहण लगे किन्नू पूजिए, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे ओ देवान देव्या, देवत्या दा भी ओ देवता है, ओदी पूजा विच मेरे मालक ने इन्हां सारे संसार दीआं पूजां विचों ला के मरियां दीआं कबरां तो चुक के बांह फड़ के आख्या ओ भोलिया मरियां दीआं कबरां ते मत्था ना टेक, आ मैं तेनू दसा जागत जोत जपे निस बासर, बुझियां जोतां दे उत्ते मत्था टेक, जागदी जोत नूं मत्था टेक, शब्द सदा जपदी जोत है, जिहदे लड़ लाउण वाले बापू नूं इक वार फिर आखो गुर

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।